अंतरवस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभु कौ सेम दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन ससदा सबना का बगसिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दित्ती अन जिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहण ना जाई है परमेसर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कही है भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवे जप हरी दोग सबे ही हंत दिन रहन जिस नाम विसरै।

प्रीत होवे अन्न खाय, गुरसिख प्रीत गुरमिल आघाय, हर दर्शन दियो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ। चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे, बचरे प्रीत खीर मुख खाए, हिरदे बिगसै देखे माए, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सा प्रीत माया मुख काचा, बिन सजाए पूरा कज पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा। गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख

तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुरु बोले ता विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अबर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छिड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंधप मेरा सगा सगाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम घर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता,

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़ भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया।

दैध चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुर लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया ओ दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन पूरे गंडन गांडे ज्यों पानी कागद बिन सजात है तो मन गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यों हार आखे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो जा नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडा है पर साधु अंजलि पुन वड्डा है कड नौ

हर जन घर घर नाम समान दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुत शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रातेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है।

मुख मस्तक पाल सुखागे, राम गुरमत घर लिव लागे हे रखाओ, धड़का रमैया रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लिव लागे, हो मन तन देवो काड गुरु को, मेरा परम पौ गुर बचनी भागे, अंधेरे दीप के आन जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिरस बनासियो, कर वस्तल ही मन जागे, साकत बद कमाया तारी, तेन जम जो हुन लागे, हुन सतगुर आगे सीस ना बेतिया, वो आवे जाए अपागे, हमरा बिनो स्वरूप ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे, जन नानक की लज पाद गुरु है, सिर बेत्यो सतगुर आगे, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, आम अहंकारी अहंकार ज्ञान मत, गुर मिले आप गुवाए।

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विचाया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमत राम रसायन जे वा हर गुण गावे। मन रसक रसक रस आघाने फिर बोर न पूख लगावे। कोई करे उपाप अनेक भो तेरे बिन कृपा नाम न पावे। जन नानक हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दिरड़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम करामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजरमा। वड़भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया। रंग माणी जियो गोर हा रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड़भागी मिल सूड सुजानी जियो। मेरा मन तनहा रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा। वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया। हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा। आओ सभी गुण कामन करी हा जियो। मिल संत जना रंगमाणे रलिया जियो। पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो। हर तुठे टोल टोल मिलिए जियो। मेरे मंत्र प्रेम लगा हर टोले जियो। मैं मेले मित्र

हर आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब कड़ भोगदा मेरे गोविंदा, हर पेरसिया भोगी जियो, हर सुजान न भुली।

जियो, गुरसबदी पाई गए हर प्रीत मराओ जियो, वडभागी जपनाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रव्यासा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रापासा जियो, हर गुरमत नाम सदा परगासा जियो, जन नानक पूरेड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज मगन ला चौथा, मेरा बिरगी नाम मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत कर लीवा जियो, मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा कर बाण जियो, मेरा प्रीत मित्र कर पुरख सुजान जियो, गुरमेले संत हर सुड़ सुजान जियो, हौ ना मिटो कुरबान जियो, हौ हर घर सज्जन हर मीत साई जियो, हर दसो संतो जी।

राखे सार जागत होए रहे बिस्मार अमृत रुना पियो प्यारी एर सराती हुए त्रिवतारी हरहाओ हे देवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हार हर हर त्याओ आन सुनिए कत हो जाइये सा संत बड़ भागी पाईये आड़ पर जेवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाध ईगा उवा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली प्रत मोली फल फुल पेडे इरस राती बोर न छोडे आना रसकस लवे न लाई कौ नानक और पय है सगाई गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा मन मंदिर तनसा जी बार इसी मध्य बसते पार इसी पीतर सुनीत साहो तन व्यापारी जाका उआ विसाहो नाम रतन को ब्योहारी अमृत भोजन करे आहारी हरहाओ मंत्र अर्पी सेव करी जय कौन सो जुगत जित कर पीजे पाए लगो है मेरा तेरे कौन सो जान जो सौदा जोर है मैल सा का किन बिद पावे कौन सो बिद जित पीतर बुलावे तू वट साहो जाके कूड़ बन जा रे कौन सो दाता ले संचारे खोजत खोजत ने कर पाया अमोर रतन साध दिखलाया हर कृपा जामे ले साहे कहो नानक गुर के वे साहे गौड़ी महला पंजवा गुवारे री रैन दिस रहे करंगा प्रभ को जाने सदगी संगा ठाकर नाम की उन वर्तन तृप्त अगामन घर के दर्शन हर संग राते मंतन घरे गुर पूरे की सरणी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको ब्योहारी अवर न जाने बिन रंकारी हर्ग शोक दुहू ते मुक्ते स अलिप्त जो घर जूते जिसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान तरते संतन की महिमा का मनवखानो।

तू है मेरा गहना, तुझ निपुन जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तो ही मुझे करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सागुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोबन मद मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस्त को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवास होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सर्वनधान, साध पूजनी सदगुर संग।

मिटे कलेश सुखी हो रही है। ऐसा दाता सबगुर कही है, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रखाओ जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

योग हर के मार्ग पद पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करणहार सदवसे हदूरा कौ नानक मेरा सुगुर पूरा गौड़ी मोहल्ला पंजवां संत की तूर मिटे अकोट संत प्रसाद जनमन ते छोट संत का दर्श पूर्ण इसनान संत कृपा ते जपिए नाम रखाओ संत के संग मिटिया अहंकार दिट आवे सब एक अंकार संसो प्रसन्न आई बस पंचा।

आओ। चरण कमल आराध भगवंता, हर सिमर ते मिटी मेरी चिंता, सब तज अनाथ एक शरण आयो, ऊच स्थान तब से जे पायो, दूख दर्द परम पव नसया, करण हार नानक मन बसया, गौड़ी मोहल्ला पंजवां, कर कर टहल रसना गुण गाओ, चरण ठाकर कई मार्ग थाओ, पलो समो सिमरन की परिया, सिमरत नाम है पार उतरिया रहाओ, नेत संतन का दर्शन पेख, प्रभ अविनाशी मन में लेख, सुन कीर्तन साध पै जाए।

चरण हृदय विसाए, दुख दुश्मन तेरी हते बलाए, गुर का शब्द तेरे संग सहाई, दयाल पय सगले जी पाई, गुर पूरे जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पनवा, अनकरसा खाए जसे टोर, मोकी जेवरी बाध्य चोर, मृतक दे सासंग बिहुना, आत जात जोनी दुखी ना रखाओ, अनक बस्त्र सुंदर पहराया, जो डरना खेत मैं डराया, सगल शरीर आव सब काम, निफुल मान को जपे नीना, कहो नानक जा को पय दयाला, सा संग मल परे गोपाला, गौड़ी महला पंजवा, कल कलेस गुर शब्द निवारे, आमन जान रहे सुसारे, है बिन से निरपो हर त्याया, सा संग हर के गुण गाया रहाओ, चरण कवल अंतर तारे, अग्न सागर गुर पारे उतारे, बूढ़ जात पूरे गुर काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कहो नानक फिर गुर बलिहारी, जिस पेड़ तगत पई हमारी, गौड़ी महला पंजवा, सा संगता की सरणी परहो, मंतन अपना आगे तरहो, अमृत नाम पी हो मेरे पाई, तेमर सिमर सब तत् बुझाई, रहाओ तज अभमान जन्म मर निवार हो, हर के दास के चरण नमस्कार हो, सास सास प्रभने संभाले, तो तन संचो जो चाले नाले, किसे प्राप्त जिस मस्तक भाग, कहो नानक ताकि चरणी लाग, गौड़ी महला पंजवा, तूके हरे किए खिन माहे, अमर दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरदेव, सेव को दीनी अपनी सेव, हरहाओ मिड़गी चिंत पुनी मन आसा, करी दया स गुर गुण तासा, दुख नाठे सुख आए सुमाए, तील ना परी जा गुर फुरमाए, किश पुनी पूरे गुर मिले, नांग तेजन सफल फल।

स्वामी सबगे तुम ते तू अंतर जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुगज वरते सब तेरा पाणा हुगम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी मोहल्ला पंजवा ताका दिस पाई गे वडभागी जाकी राम नाम लिवलागी जाके हर वसिया मनमाही ताको दुख सुपने पी नाही हरहाओ सरबन धन राखे जनमागे ताके संग केल विख दुख जाहे जनकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्रभु बिनो सुनीजे दास की तूर नान को दीजे गौड़ी मोहल्ला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मने आए

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जड का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर त्यों लिव लागी।

आर्या दुख दर्द रोग सगल बदारिया रघना गिधी बोल तराम पूर्ण होवे सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सबल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महल्ला पंजवा कोट बिघन हिरे किन माहे हर घर कथा सास संग सुनागे पीप तराम रस अमृत गुण जात जप चरण मिटी खोतास रखाव सर्व कल्याण सुख सहज निधान जा कै हृदय से भगवान औखद मंत्र तंस विचार करने हार दे मैं तार तस परम पजो पार ब्रह्म कहो नानक अटल इहो धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तेत बल रोग न व्यापे कोई राम रमन तरण पै सागर तरण सूर पारे जमकागर हरहाव तगुर मंत्र दी हो नाम ए आसर पूर्ण पै काम जब तक संजम पूरी वड़ियाई गुर कृपाल हर पै सगाई मान मुखोए गुर परम एक नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा दिखे राज ते अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वड़ियाई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त चितारे ना।

मिल नानखर अंतर जामी गौड़ी मोहल्ला पंजवा आड़ पर संगी पटवारे हर कृपा प्रभु लहे निवारे ऐसा हर असरमो सब कोय सर्व कला पूर्ण प्रसोए रहाओ महातप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुद फल पाहे उगत सियानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे गौड़ी मोहल्ला पनवा थाती पाई हर को नाम बितर संसार पूर्ण सब काम वड़पागी हर कीर्तन गाई है पार ब्रह्म तू देता पाई है रहाओ हर के चरण हृदय उतार पाल सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए।

सधी सोपाया मया करी पूर्ण हराया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग हर हर नाम हस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ गर्द वांगू लागे पेट। बिनकर तूती मुक्त न पाई है मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इस नाना

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर सिंह राते पाए ना जले, हर सिंह राते माया नहीं चले, हर सिंह राते नहीं डूबे जला, हर सिंह राते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

कला तू संग हमारे बाह जियो रहाओ। खुद बिन करी ना जीवना रग रहना संसार। जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी। हस आलंबन देव प्रभ घर तो उदर गोपाल। मोय निर्गुण मत थोरिया तू सदगी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला कवन विधि विचार। शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महार समाहे। तो प्रसन्न पै केसवा से जन हर गुण गाहे। माल पिता सुद बंद को तू मेरे प्राण आधार। सा संग नानक भजय फिर तरिया संसार। गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा एक ओ अंकार। सतगुर प्रसाद हाय कोई राम प्यारो गावे। सर्व कल्याण सुख सद पावे हरहाओ। बन मन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी। जिन घर पाया से वडभागी ब्रह्मादक सनकादक चाहे। जोगी जति सिद्ध अर आहे जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे। ताकि सरंजन बिसर तनाही वडभागी घर संत मिलाही।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी है जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ जौला होक सोचो चितव तौ लो दुखन भरे जौ कृपाल गुर पूरा फिटया तो आनंद सहज जेती स्यानप कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जौ लो मेरो मेरो करतो तौ लो बे केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलयो तौ लो डान परे पोट डार गुर

मित्र सब पदार्थ सब भला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो मसारी है जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवी है भवजल पई है पार मिल साधु संग उधार होए।

आदो यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई। रहाओ कठन क्रोध कटही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई। रतन ज्ञान सब को फिर लीना, तस कछ न बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सबिद बन आई। गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो। मानस जन्म अमोल पायो, बिरथा काए गवावो। रहाओ पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ। गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो। ताज अभमान।

महा संकट बाण तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो निहु न लावे। नानक मुक्त ताहे तुम मानो जे कड़ राम सुमावे। गौड़ी महल्ला नावा साधु राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे।

कैसा डर कमन शब्द पिछाने तीन ने पावन जिन कहया तिन कहे नुखाने जिन बूझिया तिन सहज पिछाने देख विचार मेरा मन माने कीर्त सूरत मुक्त इकनाई तही निरंजन रहा सुमाई निकर व्याप रहा निचाई।

मन त्रिवतासिया अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पै बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर्व तिरप हमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे वो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत न पाए अपेवे, आप भुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरणास दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुरु हेत, सहस बहु मद कीट मैं खसा, हरणास

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन भो नाटा ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माए उलासा नानक हरस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे वेस करे बो पसम लगावे नाम सार बहुत पछतावे तू मन हर जियो तू मन सूख नाम सार।

आप हो जाओ, मानम को सूत को कभे न जाए, जितिर शब्द न पीजे हर कहे न आए, रहाओ सबो सूत के जेता मो आकार, मर मर जम्मे वारो वार, सूत क अग्न पौने पानी माहे, सूत क भोजन जेता किस खाहे, सूत क कर्मन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सदगुर सेवे है, सूत क जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, शास्त सिमरत सो देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए, गौड़ी मोहल्ला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा, हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख शोभा साज दुआरा, पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा रहाओ, गुरमुख विचो हो में जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहु चतराई, जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजो लाए भय नित्याना, जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पद नामे वड्याई।

पद पाईए, ना मने सुख होए, सगुर ते नाम पाईए, धर्म मिले प्रसोए, सगुर ते जो मुह फेरे ओए परम दे ना टिकन, तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन, यो जग परम भुलाया मोहे ठगो ली पाए, जिन्ना सगुर फिटया तिन नेड़ न पिटे माए, सगुर सेवन सो सोहणे होमे महल गवाए, अबदरते से निर्मले चले सतगुर पाए, हर प्रोदाता एक तू तू आपे बख्स मिलाए, जन नानक शरणागति जो पावे तवे छिड़ाए, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हले, एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर हले, मन परदेसिया क्यों मिल गए घर माए, गुर भाग पूरे पाया गल मिलया प्यारा आए, मन कर हला सतगुर पुरख ते आए, हरहाओ मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे।

0: ताला त्रै गुण माया बिनसब ताला गिर तर तारण गगन अर तारे रस पवन पावक नीरारे दिन सरायण वर्त अर पेदा सात सिमरत बिन सह गए बेद तीर देव देवरा पोथी माला तिलक सोज पाग होती धोती डंडाओत प्रसादन भोगा गवन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीजे पासारा बिन सजाए गो सगल आकारा सह सिवत भगत तत् गयाना सदा आनंद निचल सथाना ता संगत साध गुण रस अनपो नगर ता सदवस तय पो परमा सोग न चिंता आवन जावन मृत न होता तय सदा आनंद अनहत आकारे भगत वसे कीर्तन आधारे पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान सा संतरे।
1: गौड़ी मोहल्ला पंजवा। जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोय जे दुबदा मार गवावै इसे मार राज जो कमावै रहाओ जो इस मारे तिसको पो नाहे जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस हो वै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निचल तनी जो इस मारे

देख देख जीवा, गुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर की रेण नित मज्जन करो, जन्म जन्म की होमे मल हरो, तिस गुर को चूला भू पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, तिस गुर के ग्रह टोभो पानी, जिस गुर ते अकल कद जानी।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

सुहाई, कापर तन सुहावे, जां पिर पावे, गुरमति चित लाईए, सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर के अंक समाईए, गुर शब्द मेला ता पिर रावी, लहा नाम संसारे, नानक कामण ना प्यारी, जां हर के गुण सारे, सातन रंग माणे जियो, अपने नाल प्यारे, आए निस रंग राती जियो, गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हो मैं मारे, इन बद मेरो प्यारे, सातन सुहागण सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे, अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे, नानक कामण हर वर पाया, सगले दुख विसारे, कामण पिरों भुली जियो, माया मोए प्यारे, झूठी झूठ लगी जियो, कूड़ मुठी कूड़ियारे, कूड़ निवारे गुरमत सारे, जूए जन्म न हारे, गुर शब्दे सेवे सच समावे, विचों हो में मारे, हर का नाम हृदय विसाए।

भावे अन्न ना पानी, पानी अन्न ना पावे, मरिए खावे, बिन पर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर पावे, जो मिले तवे मिलाईए, आपे मिल ले सुखदाता, आ मिलिया कर आए, नानक कामण सदा सुहागण, ना पिर मरे ना जाए, गौड़ी मोहल्ला तीजा, कामण हर रस वेदी जियो, हर के सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज सुमाए, दुबदा सहज सुमाए, कामण वर पाए, गुरमती रंग लाए, यो शरीर कूड़क सत फरिया, गलताई पाप कुमाए, गुरमुख भगत जित सहत उपजय।

ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन आपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सूखम आपे अस्थूला।

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखियो अकारा एक है सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण त्रिटारं सगल पाण कर करे उपायो जन्म मरण मनमो बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन खां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहू ने नानका होत जा सब धूर पवड़ी तद

कुसुम रंग बिरसोर नांग ते सरणी परो बिरस जाए मैं मोर पौड़ी रे मान बेनखार जह रचो तह तह बंधन पाखे जेब कदू ना छूटी है साकत तेऊ कुमाए।

या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दर्ग कहे न को आओ बैठ आदर शुभ देव वा मेल नहीं पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्त कर्म लिखो तुर जाक हर संप नानक करता के श्लोक लालच चूड बेकार मोह व्याप्त मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बेखे रस राते अंग बुद्ध माया मद माते या माया में जन्म में मरना ज्यो जो हुक्म तेरे त्यो करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गैर गंभीर अथाह दूसर हई अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एके आप अवर न हो मनहार होश आया ओवा का अंत न काहू पाया पीठ हस्त में पूर समाने पलट पुरुष सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर से अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना श्लोक आत्म रस हे जानिया हरंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सबल ताऊ को गनिये जास रसन हर घर जस पनिये आए बसे साधु के संग अनदन नाम त्यावे रंग आवत सोजन नाम है राता जाको दया मया विधाता एक आमन फिर जो न आया नानक हर के दर्श सुमाया श्लोक या जत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम सुमाओ पौड़ी यैया जारो दुर्मत दो तिसे त्याग सुख से जेसो यैया जाए परो संसरना जे आसर या भवजल तरना यैया जन्मन आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारिये गुर पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ये बिखया दिन चार छे छाड़ चले सब कोय ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही बासेती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते भौर न आया श्लोक

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए टहेत टहेत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए सुमाए।

अमृत प्रभ नाम भगत जना कई मन बस राम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बस, प्रभ के सिमरन दुख जम नस, प्रभ के सिमरन काल पर हर, प्रभ के सिमरन दुश्मन टर, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लाग, प्रभ के सिमरन अन दिन जाग, प्रभ के सिमरन पौ न व्याप, प्रभ के सिमरन दुख न सुनताप, प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्ब निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ के सिमरन जब ता पूजा, प्रभ के सिमरन बिन सह दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभ के सिमरन तर्क है मानी, प्रभ के सिमरन हुए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल भला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझ, प्रभ के सिमरन सबके सुज, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए सुमाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंत, प्रभ को सिमरह से पुतवंत, प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरह ते बेमोताज, प्रभ को सिमरह ते सर्व के राजे, प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी, प्रभ को सिमरह ते मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन रमल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अंध कन्हेरे, प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कबहु ना चूरे, प्रभ के सिमरन हर गुरबानी, प्रभ के सिमरन सहे सुमानी, प्रभ के सिमरन नित्यलयासन, प्रभ के सिमरन कमल बेगासन, प्रभ के सिमरन अनहा चुनकार, सुप्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत पगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आम निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक, दीन दर्द दुख पंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाथ अष्टपदी, जय मात पिता सुदमीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाभयान दूध जम दलै, तै केवल नाम संग तेरा चलै, जय मुस्कल हो वै अदपारी, हर को नाम खिन महे उधारी, अनक पुनः चरण कर्तनी तरै, हर को नाम कोड पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कन्हेरे, हर सेठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंधन पर, हर का नाम जपत निस्तर, अनक माया रंग तिघना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जे मार्ग इहो जात अकेला, तय हर नाम संग हो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गद पाई है, टूट नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार पराही, अनक बिघन जय आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार, अनक जून जन्म में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मर कभू न थोवे, हर का नाम कोड पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जे मार के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पन तेरा को ना सुजानू, हर का नाम तय नाल पछानू, जय महाभयान तप्त बहु काम, तय हर के नाम की तुम ऊपर शाम, जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष, तय नानक हर घर अम

दिन रात हर हर औखद सात कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत बवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त पुत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

नाम की महिमा, संत दिवस, संत प्रताप, तुरत सवनस, संत का संगवड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए श्लोक, बहु सतर बहु सिमरति, पेखे सर्ब टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी, जाप तव ज्ञान सब ध्यान, खड़ सातर सिमर तव ज्ञान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खण पृथ्वी फिर चिर जीव, मां उदास तपी सरतीव, अग्न माए होमद प्राण, कानक असव हैवर भूम दान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अद साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, हर के नाम संसर कशनाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गद पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुट, गर्भ गुमान न मन ते हुट, तोज करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, ए देही को बो साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरे, जल धोवे बहु दे अनीत, दुध कहा होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पातत बहु मूच, बहुत सियाणप जमका पौ व्याप, अनक जदन कर तृष्ण ना त्रप, पेख अनेक अगर नहीं बुझे, कोट पाप दर गए नहीं सिज, चूर सुनागी उप पयाल, मुए व्यापे माया जाल, अवर करतूत सगली जमडान, गोविंद भजन बिल तिल नहीं मान, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुपाय, चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोर है, साज संग ए होमे शोर है, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी पर, जे जन को प्रदर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, सा संग जाका मिटे अब महान।

भगवान करण करावन हार सुवामी सगल कठा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर नाम सलोक निर्गुनियार ए आनिया तो प्रसदा सुमाल जिनकी ते चीत रख नानक निभगी नाल अष्टपदी परमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू सासवार सीगारिया सर्व अग्न में जिने उबारिया पार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साग सैन मुख प्याओ बैठ तो दैन इहो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्स लियो तो नानक सीजे ये प्रसाद हर ऊपर सुख बस तुद प्रात मीत बनता संग हस ये प्रसाद पी वैसी तल जला सुखदाई पवन पाप अमुला ये प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साध बसा तीन ने हस्त पाप करण नित रसना इसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काढ़ ले ओ प्रभ आपे।

साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब हो तनबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रमहे सुमानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हो सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कत हूं तावे, साध संग अस्तित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रसो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सा मीत, साधु के संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग न बीगा पैर, साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजे सबे आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग न कबहू तावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त्या गोचर लहे, साधु के संग अजार सह, साध के संग बसे स्थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान, साध के संग तब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार, साधु के संग सो धन पावे, जिस धन ते सबको वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सबल जनम, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहार, साध के संग कलुख तहर, साध के संग नरक परहर, साध के संग ईगा उहा सुहेला, साध संग बिशर तहर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बस, नानक उधरे साध सुन रस, साध के संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसर, साध संग सर पर निस्तर, साध के संग लगे प्रामीठा, साधु के संग कड़का डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जान, जेता सुन तेता बखियान, साध की उमा त्यो गुण ते दूर, साध की उमा रही भरपूर, साध की शोभा का नागी अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊजते ऊची, साध की शोभा मूजते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एक सबिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख।

सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी के नाही अवमान ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने के सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी तीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सरा समंदर सी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक उपरयास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी परे उपकार माह ब्रह्मज्ञानी कह नागी तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्मज्ञानी कह हो सो फल ब्रह्मज्ञानी सोबल फल ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्मज्ञानी कह एक कह रंग ब्रह्मज्ञानी कह बसे प्रसंग ब्रह्मज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्मज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत ब्रह्मज्ञानी अंगबोध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहेता ब्रह्मज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सिद्ध का करता ब्रह्मज्ञानी ता जीवे नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उर तारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूपना पेखे नेतर साध की टहल संत संग हेत करना सुने काहू की निंदा तब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद दिखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्रीजित पंच दुख ते रहत नानक कोड़ मध्य को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए पिन कर्म करत होवे ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बचे केवल भगत कीर्तन संग रचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल तब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गल पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिरसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मन खोवे इस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्प विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे तो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म मैं शोध राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कह उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे तो पंडित फिर जो नयावे वेद पुराण तिमृत बूझे मूल सूखम जाने अस्तूल
चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे जिसकी गद होए, सा संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर उर तार, पास प्रेत मुग्ध पाथर कौतार।

कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम परगास कई कोड तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदसदही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस तुग सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जोत भावे सोई होग खिन में था था पनहार अंत नहीं किस पारावार हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ भावे मानुख गद पावे प्रभ भावे ता पात्र त्रावे प्रभ भावे बिन सास्ते रख प्रभ भावे ता हर गुण पख प्रभ भावे ता पत उधार आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप स्वामी खेले बिगसे अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुख ते क्या होए आवे जो तु भावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तु भावे सोई करे अनजानत बिखिया में रते जे जानत अपने आप बचे परमे पूला दर्द तावे निवख मैं चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिश कशु न आवे तिस तत्काल दैज प्रटावे जाको अपनी करे बगसीस ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिण सत की रास घड़ घड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करण करावन सर्व।

हर करंग हस कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ऊबकस पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कभू नित करे बोपात कभू सोए रहे दिन रात कभू महा क्रोध विकराल कभू सर्व की हो तरवाल कभू होए बहे बड़ राजा कभो पेखारी नीच का साजा कभू अब कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे यूं प्रवरा के तिव ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कभू होए पंडित करे बखियान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तड़ती स्नान कभू सिद्ध साधक मोह ज्ञान कभू कीड हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मर्तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जलया एक टाना, त्यों ज्योति संग ज्योत सुमाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद कुरबान सरोक। सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अब महान, तो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, तो होवत विष्टा का जंत। आस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बो जोन परमावे। तान पूम का जो करे गुमान, तो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानकी खा मुक्त आगे सुख पावे। तनवंता हुए कर गरबावे, तन समान का संग न जावे। बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल पीतरता का हुए विनाश। तब ते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाए पसमंत। किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म रायत करे खुवारी। गुर प्रसाद जाका मिटे अपमान, तो जन नानक दर गए परवान। कोड कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरतारे। अंक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अंक जितन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दर गए गो कैसे गवे। आस को जो पला कहावे, किसे पलाई निट न आवे। सर्व की रेन जाका मन होए, को नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब सुख सुगुना ही कोए। जब ए जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग ने चलना ही कीत। जब लग मोह मग्न संगमाए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहज कटे लग तो उड़तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करे, ने तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे, सोपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए। करन करामन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करामन करने हार, इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृढ़ करे तैसा होए, आपे आप आप प्रसोए। जोश तीनों सो अपने रंग, हवते दूर सबू के संग। बूझे देखे करे बबेक, आपे एक आपे अनेक। मरे ना मिलसे आवे ना जाए, नानक सदगी रहा सुमाए। आप उपदेशे समझे आप, आपे रचिया सबके साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कसु का ओ करने गार। उसते पिन कहो किस होए, थान सनंतर एक कैसोए। अपने चलत आप करने गार, कौतक करे रंग आपार। मन में आप मन अपने माघ, नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रस्वामी, गुर प्रसाद किने विखियानी। सच सच सब सब कीना, पोड़ मदे किने बिरले चीना। पला पला पला तेरा रूप, आत सुंदर अपारे रूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कर कर सुनी श्रवण बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन पर, तो जन उदर नहार। संत की निंदा नानका, बौर बौर अवतार। अष्टपदी संत के दुखन यार जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन। संत के हत्ते को रखे ना कोय, संत के दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा दे करे, नानक संत संग निंदक पीतर। संत के दुखन ते मुख पावे, संतन के दुखन काग जून लवे। संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को शले। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए। संदोखी का थाओ को नागे, नानक संत पावे ता वे पीगर पागे। संत का निंदक महा अतताई,
संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन। संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख मैं दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित्र,

गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल भगसंद साथ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन इहो अनराओ।

अनद रूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक थ पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाग सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मै जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अवनासी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत या पे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सोनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पावन नाम के संग उदरे सुन सवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गद पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख स महे सुमाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत तेजन जाकर दे परवेश सत निरत बूझे जे कोय नाम जपत ताकि गद होय आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जोत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बूझत आया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुर के बदन पदार्थ लहे वे दाते दो कट नहार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोवट भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आदि सच जुगादि सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सस परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यामनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रसोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करामन तिन मूल पछानिया जा के हृदय विश्वास प्रवे आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया है ते निरपव होए बसाना जिस ते उपजा तिस माए सुमाना बस्त महेले बस्त गडाई ताको पिन न कहे ना जाई बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी।

दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत यो मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृटाया नाम तन नमो रूप रंग नमो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सो रह सुमाए, जो होआ होवत सो जाने, प्रभ अपने कहो पछाने, जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कह एक न जानो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे इनकी ओट लेहे, मन तने अपना तिन जन देहे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोग का दाता, इसकी शरण सर्व सुख पावे, इसके दर्श सब पाप मिटावे।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कर्ण सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सो कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन धान मय हर नाम धान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दस ताव त्या बैठाए ताको बिगन ना लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हनाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

होंदे प्रतक गुरु जो विछड़े, तिनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थोक थोक मोए पावी, जो सदगुर फिटके से सब जगत फिटके, निज पंबल पूसे खावी, जिन गुर गो प्याय अपना से लेंदे टहा फिरावी, तिनकी भुख कदे ना उतरे, निज भुखा भुख कूकावी, उन्हां दा आख्या को ना सुने, जो सदगुरु मारे तिन जाए मिले, रहंदी खोंदी सा पत गवाही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे ओस मिले तो कुछ ते उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही, उर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा जे हुंदे गुरु बैठ गया, ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हस्त धरया, गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई न चढ़े सवाई, अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करते आप बैठ गया, आपे पैज रखे प्रसोई पौड़ी, ताया कोट अपार है, अंदर खटनाले, गुरमुख सौदा जो करे, हर वत समाले, नाम दान खरवण जीए, हीरे पुरवाले, विण काया जे होर थे तन खोज दे, से मूड बेताले, ते उजड़ परम पुआई है, ज्यों झाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सदगुर पूरे की, सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खूह है, उथे पकड़ ओट होया, ऊग पुकार को ना सुने, हो औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया, लामूल सब खोया, ओ तेली संदा बलदकार, नित पलके उठ प्रवजोया, हर वेखे सुने नित सब किश, तिद्दू किश गुज्जा ना होया, जैसा भी जे सोलुणे, जेहा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रवे अपनी, तेस सदगुर के चरण तोया, गुर सदगुर पिछे तर गया, ज्यो लोहा काठ संगोया, जन नारक नाम त्याए तू, जप हर हर नाम सुख होया, महला चौथा, वड पागिया सुहागणी, जिन्ना गुरमुख मिलिया घर राय, अंतर जोध प्रगासिया, नानक नाम सुमाए पौड़ी, यो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुज रतन विच लोकर है, कोई गुरमुख सेवक कढ़े खोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता एक रव्या इको ओत पोत, एक देखिया एक मन्या, इको सुनिया सरम स्रोत, जन नानक नाम सराए तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत, श्लोक महला चौथा, सब रस तिनके हृदय है, जिन हर वस्या मन माघे, हर दरगे ते मुख उजले,

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परख नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब केश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हवठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सदगुर पेटिया महला पंजवा दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नाव जपंदो तिस्तनी पौड़ी सिमरत सातर सोध सब किने की मना जानी जोजन पेटे साध संग सोहर रंग माणी सच नाम करता पुरख एरत ना खाणी मस्तक होवे लिखया हार सिमर पुराणी तुसा दिचे सच नाम नानक मेहमानी। सलोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी

कार बंदो सज धर्म का गढ़ थम अहल ओट लयो नारायण दीन दुनिया चल नानक पकड़े चरण हार तेस दर गए मल सलोक महला पंजवा जाजक मंगे दान दे प्यारे देवन हार दातार मैं नित चितारे निखुट न जाई मूल अतुल भंडारे नानक शब्द अपार तेन सब किश सारे महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उत अमृत वंडी है सुखिया हर करने जमके पंथ न पाई है फिर ना ही मरने जिसनु आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचर है साध जान अम्यो चल है चरणे एक दर्शन नानक जीवया मन अंदर तरने श्लोक महला पंजवा सतगुर पूरे सेवे है दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य है कार्ज आवे रास महला पंजवा जे सिमरता संकट छुट है अंध मंगल विश्राम नानक जपिए सदा हर निमख ना विसरो नाम पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर लद्दा साधा सरणी जो पवे सो छुट्टे बद्दा गुण गावे अवनासी है जोन गर्भ न दद्दा गुर पेटिया पार ब्रह्म हर पाड़ बुझ समद्दा

पद हर प्रवान, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाइये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम। जब नहीं चीन से आत्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई। बिंद राग जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गद पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादुर पानी माही। जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कै जाही। रहाओ काया रत बहुरू पर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कर सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्व छोट

आप मोए मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत हारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए बहुरंगा ऐसे काल हम बहुत बसाए जब हम आराम गर्भ होए आए रघाव योगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शद्रपत कबहू पेघारी सागत मरे संत सब जीव राम रसायन।

हर हर बास सुगंध बसाई तहर कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब तंदा गौड़ी कबीर जी ते पदे चार तुके जम ते उल्ट पए है राम दुख बिनसे सो कियो विश्राम बैरी उल्ट पए है मीता सागत उल्ट सुजन पै चीता अब मुझे सर्ब कुशल कर मानिया साध पई जब गोबिंद जाने आ रहा तन मैं होती कोड उपाद उल्ट पई सुख सहज समाध आप शाने आपे आप रोग ना व्यापे तीनों ताप अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख सहज समाव आप ना डरो ना अवर डरावो गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जो के कर जाता शब्द अतीत अनाह दराता जिन राम जानिया तिने पछानिया जो गूंगे साकर मन मानिया ऐसा ज्ञान कथे बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करो जे बौर ना करना सो पद रवो जे बौर ना रवना सो त्यान तरो जे बौर ना तरना ऐसे मरो जे बौर ना मरना उल्टी गंगा जमन मिलावो बिन जल संगम मन में नावो।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। बिखिया अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। सनकादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, ता छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय दो नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पय सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी गुवारेरी अहे निस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम ना पछाना। गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज, लाज तो नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर कर जातन सोही। सो साहेब रहा पर पूर, सदा संग नाही हर दूर।

कहिए आपन कया ना लेगी। सरजियो काटे निर्जियो पूजे अंतकाल को पारी। राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले पार ब्रह्म नहीं जाना। कैत कबीर अकुल नहीं चेतया बिखिया सो लबटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन सुमाया। अंजन माये नरंजन रहिए बौड़ न पव दिल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बलोइए गुरमत मनुआ अस्तर राखो। इन बिद अमृत पीओइए रखाओ गुर के बाण बज्र कलशेदी। प्रगटिया पद परगासा सगत अंधेर जेवड़ी प्रचूका। निचल शिव कर बासा तेन बिन बाणे तनख चढ़ाइए। यो जग बेद्या पाई दैद बूढ़ी पवन चुलावे। डोर रखी लिवलाई उन मन मनुआ सुन सुमाना। दुबदा दुरमत पागी कहो कबीर अनपो एक देखेया। राम नाम लिवलागी गौड़ी बैरागन टिप दे। उल्टद पवन चक्कर खट पेदे सुरत सुन अनरागी। आवे ना जाए मरे ना जीवे तास खोज बैरागी। मेरे मान मन ही उल्ट सुमाना। गुर प्रसाद अगल पैयावर ना तरथा बेगाना। रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे। जिन जैसा कर मानिया अलौती का जैसे पया बरेडा। जिन पिया तिन जानिया तेरी निर्गुण कथा काय स्यो कहिए। ऐसा कोए बबेकी कहो कबीर जिन दिया पलीता। तिन तैसी चल देखी गौड़ी ते पावस सिंध तूप नहीं सही। ते उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दो सुब्याप। सुन समाद दो ते नाही सहज की अकथ कथा है।

प्रेम भगत निस्तारे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलतर चो जगदीश काम सुवाए गजपद परे मन बौरारे अंकस सहयो शीस बिखे बाच हर रात समझ मन बौरारे निरपय होए न हर पदे मन बौरा।

इस माटी में पमन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रगाओ, गर्भ जोंग में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, डरके नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये जाते पाइये पर मन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपै देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपै त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो यो संसार, राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तैरची पीवत मर्दन लाग, तय कबीर चित चेतया, आराम सिमर बैराग।

भगत है तो अवतार लियो है। आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहे तो हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरण आकाश दसो दसनाही, तब वो नंद कहा थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा के माई ना बापोरे। गौड़ी

कुंठ जाइए ना पदार्थ मने बसाइए हृदय सुजो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक तोए निंदा करे सो हमारा मीत निंद कमाए हमारा चीत निंदक सोजो निंदा हो रे हमारा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमारा करे उधार जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपो तरन तरन राम राया हरहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक पय है एक के देखत मन पतिया ही जब बुध होती तब बल कैसा अब बुध बल ना खटाई कहे कबीर बुध हर ली मेरी बुध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी बस अनूप बीच पाई कुंजी कुल्प प्राण कर राखे करते बार न लाई अब मान जागत हो रे पाई गाफल हुए के जन्म गवायो चोर मुसे कर जाई रहाओ पंच पैरुआ दर में रहते इनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत होए रहो तो ले प्रगास उजारा नाव कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई कैत कबीर नवे कर मुसे दसवें तत् सुमाई गौड़ी माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना फिर सुनकाद जस गुण गावे तस बसे मोरे प्राणा ना रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत गगन मंडल में ध्याना ना बिखे रोग पय बंधन पग मन निज कर सुख जाना ना एक सुमात्रत जान मान प्राप्त दूसर मने ना आना ना चंद्र बाज पय मन बासन त्या कट्यो अब माना ना दो जन गाये त्याय ठाकुर तास प्रभु है थाना ना ते बड़पा बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना काट सकत शिव सह प्रगास्यो एक एक समाना ना कहे कबीर गुर पेट महासुख परम तरह मन माना ना राग गौड़ी पूर्वी

अक्षर लो त्रै सब कुछ इन की मा गए ए अखर खिर जाएंगे ओए अखर इन मैं ना गए जा बोलते अक्षर आवा जय अबोल तय मन ना रखावा बोल अबोल मद है सोई जस ओ है तस लखे ना कोई अले लहो तो क्या कहो खो ता को उपकार बड़क बीज मैं रव रहे हो जा को तीन लोग विस्तार अले लहंता पेद शय कश कह पायो भेद उल्ट भेद मन पेद्यो पायो अपंग अछेद तुरक तरीक तजानिए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारण कशुक पढ़िए ज्ञान ओंकार आदमय जाना लिखर मेटे ताए न माना ओंकार लखे जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल में पावा सद विकास संपट नहीं आवा हर जे तह कुछ मरस पावा आके कहा कह का समझावा खखा ए खोड़ मन आवा खोड़े शाड़ ना दैद सतावा खसमे जान खिमा का रहे तो होए नख्याओ अखे पदल है गग्गा गुर के भजन पछाना।

आदि करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

ना तरखरा हृषय गैराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाय तीन देव एक संगलाय तीन नदी ते त्रिगुटी नागे अंश कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप स्यों लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे थावर थिरकर राखे सोए जोत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया परगास तब हुआ सगल कर्म का नास जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम स्यों लागो रंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारियले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारियले गनका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामल तारियले चरण बदक जन तेऊ मुक्त पहे औ बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिद सुदामा उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेऊ तरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोत सोज दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे नाम सारो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुपाई चरण ना छाडो शरीर कल जाई कहो रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन कर ना बिलंबा बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं तेठाओ ना तस्वीस खिराज ना माल खोब ना खता न तरस जवाल आ मैं खूबतन गए पाई ऊहा खैर सदा मेरे भाई रघाओ कायम दायम सदा पातशाही दो मना सेम एक सो आही आबा दान सदा मशहूर ऊहा गनी बसे मामूर त्यों त्यों सैल करे जो पावे महरम महल न को अटकावे कहे रविदास खरा चुमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बैरागन रविदास जियो काट आव काट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार रमैये सो एक बेन।

मोसो को ना कह समझाए, जाते आवा गम बिलाए। रहाओ बौद्ध धर्म न रूपी है, करता दिसे सब लोए। कम कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण। संसा साध हृदय बसे, कौन घेरे अवमान। बार उदक पखारिये, कर पीतर बेबद बेकार। सुध कमन पर होए बो, सुज कुंचर बेद व्यवहार। राव प्रगास रजनी जसा गत, जांत सब संसार। पारस मानो तांबो छोए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर पेटिए, पूर्व लिखत ललाट। उन मन मान मन गी मिले, छुटकत बज्र कपाट। भगत जोत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार। सोई बस रस मन मिले, गुर निर्गुण एक विचार। अनक जतन निग्रह किए, तारी ना टरे परम पास। प्रेम भगत नहीं उपजे, ताते रविदास उदास। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निरवैर। अकाल मूर्त अजूनी सह पंग, गुर प्रसाद। राग अस महला पहला, कर पहला सोदर। सो दर तेरा केह, सो कर केह। जित बै सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेके संख। केते तेरे वामन हारे, केते तेरे राग परी सो कही है। केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनु पौन पानी बै संतर। गावे राजा तर्म दुवारे, गावन तुदनु चित गुप्त लिख जानन। लिख लिख तर्म विचारे, गावन तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी। सोहन तेरे सदा सुवारे, गावन तुदनु इंदर इंद्रासन बैठे। देवतिया दर नाले, गावन तुदनु सिद्ध समाधि अंदर। गावन तुदनु साध विचारे, गावन तुदनु जति सति संतोखी। गावन तुदनु वीर करारे, गावन तुदनु पंडित पढ़े रखी सर। जुग जुग बेदा नाले, गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन। सुरगुमश पय आले, गावन तुदनु रत्न पाए तेरे जेते। आठ सठ तीर्थ नाले, गावन तुदनु जोध महाबल सूरा। गावन तुदनु खाणी चारे, गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह मंडा। कर कर रखे तेरे तारे, सेई तुदनु गावन जोत पावन। रते तेरे पवित्र साले, होर केते तुदनु गावन। से मैं चित न आवन, नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर देख कीता अपना, ज्यो तेदी वड्याई। जुत पावे सोई करसी, फेर हुक्मा करना जाई। उपात साहो सहापत साहेब, नानक रहन रजाई। आसा महला चौथा, सो पुरख निरंजन। हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम्य पारा। सब त्यावे सब त्यावे तुझी, हर सच्चे सृजनहार। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातार। हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचार। तू कट कट अंतर सब निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, हव तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हव तुद बिन अबर ना जाना। तू पार ब्रह्म।

जी छे जन जुग में सुखवासी छे मुक्त पै जिन हर ताया जियो तेन टूटी जम की वासी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप सुमासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करे घर पूजा जी तब तापे जपे बेअंत तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंत से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे घर भगवंता तू आद पुरखे परंपर करता जी तुझे वड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सृज सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई।

नदर करे जो कुछ करना सो करया अवरण करना जाई जैसा वर्ते तैसो कहिए सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखावज पाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तब ताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहिंदिया उठदिया नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाहो ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

बंद खीन खराब होवे नित कंद खान जीवन की बहुती आस लेख तेरे साध गिरास एरस अंधले दीपक दे भौजल डूबत चिंत करे

सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किश पाए नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। खड़ दर्शन वरते वरतार, गुर का दर्शन अगमे पार। गुर के दर्शन मुक्त गद होए, साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसार, जे को लाए

सदा सुख होए, गुर के दर्शन मुख द्वार, सदगुर सेवे परवार साधार, निगुरे कौ गद काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर, गुरमुख ताको लगे ना पीर, जम काल ते नेड़ न आवे, नानक गुरमुख सा

सोई जन जान हर गुण सदगी आख वखाण जिन घर सेवया तिन सुपाया सहजेगी घर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होय तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेख जाने सोय जन नानक गुरमुख प्रगट होय एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर दूजा महला चौथा किसी तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई किसी तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई किसी तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुवाई हमारा तड़ा रहया सुनाई हम हरसों तड़ा किया मेरी घर टेक मैं हर दिन पख तड़ा अवर ना कोई हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ जिनसो तड़े करे से जागे चूड़ तड़े कर पछोतागे फिर ना रह मन खोड़ कुमागे हम हरसों तड़ा किया इसका कोई समर्थ ना है ये सब तड़े माया मोह पसारी माया को लूजे गावारी जन्म मरे जुए बाजी गारी हमरे हर तड़ा जे हल्त पल्त सब सवारी कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान में जाए जिसनु कृपा करे तेस सत्संग मिलाए हमारा हर तड़ा जिन ए तड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ तड़े बे पावे पराया शिद्र अटकले अपना अहंकार बदावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर तड़ा धर्म।

परदेश त्याग सौदे को आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुणरास बन पल्ले आनी, देख रतन ओ मल बटानी, सह व्यापारी द्वारे आए, वखर काढ़ो सौदा कराए, रहाओ सहे पठाया सहे पास, अमोल रतन अमोला रास, विट सु

माया मूठा चेत नाही, परमे पूला बोती राही, बाहर पेख करे कनेरे, अंतर बिखय उतरी केरे, आवर उपदेश आप ना बूझ, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीज।

अवमान बिगड़ रूप मन में अवमान तो निस्वरूप सुजान बचकन आत दरब मुहिफाकी तू रहाओ असूची तेरी पाकसाल कर स्नान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान साबित खोई लोभ स्वान कापर पैरे पोगे पोग आचार करे सोभा में लोग चुआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल आवर जोन तेरी पनिहारी इस धरती में तेरी सिकदारी सोयना रूपा तुझ पै दाम सील बगारियो तेरा काम जा को दिट मया हर राय साबंदी ते लई छड़ाए साध संग मिल हरस पाया कहो नानक सफल ओ काया सब रूप सब सुख बने सुहागन आत सुंदर बचखन तू रहाओ दूजा आसा मोहल्ला पंजवा एक तुके दो जीव दीस ते सर पर मरना मुआ होए तिस निचल रहना जीवत मुए मुए से जीवे हर हर नाम अब खुद मुख पाया गुर सबदी रस अमृत पीवे हरहाओ काची मटकी।

तुझ पाए अमान विष्टा अस्त रगत प्रेटे चाम। इन ऊपर ले राख्यो गुमान एक वस्त बूझे ता होवे पाक बिन बूझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान जिसते पाइये हर पुरख सुजान। आसा मोहल्ला पंजवा एक तुके चौप दे एक कड़ी दिन समुख को बहुत देहारे। मान ना रहे कैसे मिलो प्यारे एक पल दिन समुख को कभू ना बिगावे। दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको पिरे मिलावे। रहाओ चार पैर क्यों जुगे समाने रैन पई तब अंत न जाने। पांच दूत मिल पिरो विछोड़ी प्रम्पन रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखा।

रब रहे आप सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन,

मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत पद केवल नाम सरंग जामला पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै हरहाओ जब तब संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीज करमा सरण परे की राखो शर्मा आसा महला पंजवा कुछ बिन अवर नही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी प्रा मेरा काहे जी डराही तुमरी ओट तुम्हारी आसा बैठत उठत सोवत जागत विसर नही तू सास गिरासा रहाओ राख राख शरण प्रव्यापनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सदगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छाए प्रीतम स्यों मेरो मन।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करने हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यो हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सा मीता झूठा इओ पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खा खा मोए गवारा।

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया, रहाओ किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे पुकारा, निंदकी गत तथु नागी, खसमे ए वे पाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सगाई, कहो नानक संत खरा राखे, निंदक दिए रुढ़ाई, आसा मोहल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहां काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुसरोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरी, नाम न स्वयं डोरा, रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा, तत् योग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतरजामी सब के जाने, उसते कहां छुपाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तद काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान निरत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोध अपना, पाछे अवर दी जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, पर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लैबर बूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, अज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़े उजड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, टूपी निरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिरसाना रे, आसा महला पंजवा, बंधन काट बसारे औगुण, अपना बिरध संहारिया, होए कृपाल माध पित न्याई, बारग ज्यों प्रद पारिया, गुरसिख राखे गुर गोपाल, काढ़ लिए महापवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जम ते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साध गराज जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साल संग दुख नाठे, छिजे न जाए ही पौ ना व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंतकाल प्रपय सहाई, एत उतरा कनहारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा, जा तू साहेब ता पौ केहा, हों तू बिन के साल आही, एक तू ता सब किश है,

जाने बिरथा सभा मन की, और किस पे आग सुनाइए। दिन नावे सज पौराया, नाम मिले सुख पाइये। क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास। सब कुछ कीता तेरा वर्त, सदा सदा तेरी आस। जे दे वडियाई ता तेरी वडियाई, एत उत तुझे ते आओ। नानक के प्रसदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवां, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर।

अगे हीते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, ऊर चूक अपना बार्ग बक्सया, पार ब्रह्म भगवाना, सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग मास उपाया, हर अमृत मुख नाम दिया, हरहाओ अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पए, अंधकूप महाकोर ते बहा पकर गुर काढ लिए, निरपो पए सगल पो मिटिया, राखे रखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रा मेरे, कार्ज सगल सवारे, गुण निदान साहेब मन मेला, शरण पया नान सोहेला, आसा महला पनवा, तू विसरेता सब को लागू, कीत आवे ता सेवा, अवर न को दूजा सूज, साचे अलख अपेवा।

सगल सृष्ट उवा के चरण मल तोई, जो प्राणी काऊ न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, ता प्रभु नानक मीठे लागे। आसा महला पंजवा, एको एकी न निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध के संगे, हर हर नाम त्यावो रे हरहाओ। सगल समगरी जाके सूद परोई, कड़कड़ अंतर रव्या सोई, ओबद परलो खिन में करता, आप लेप निर्गुण रहता, करन करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा।

और पूरे के चरण गए, और जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक है ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक है की नो ठाओ, कहो नानक और परम पखोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाओ मूर्ख मुगध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम तर्म न साधा, ना प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, बिनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो सरनाई, मुको देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चै नाय, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब तिसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जन के, आत निर्मल दास की जुगता, रहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण को लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परमो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक जो प्रसरणाई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु मां देव मोया। गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना। तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बाधा, हमे पचे मनमुख मुँह राखा। गुरु नानक बां पकड़ हम राखा, आसा महला पंजवा। सर्व दुख जब सरे स्वामी, ईगा उहां कामना प्राणी। संत तृप्ता से हर घर त्याय, कर कृपा अपने नाए लाए। सर्व सुख पर तुमरी रिजाए, रहाओ संग होवत को जानत दूर। सो जन मरता नित नित चूर, जिन किसी दिया ते चित तनाहे। मां बिखिया में दिन रहन जाहे, कहो नानक प्रसिमरो एक। गद पाएगे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा। नाम जबत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया। सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर। गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वसगत आया। जिस मन वस

सर्व सुख पावे, आवर कहू पे बौर ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह सुमाही, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुण मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विश्वास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान घो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नैन

मालमूत मूड़ जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव रखाओ। तू आप करता साफ सरित तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए। साजुग त्रेता द्वापर पणिए काल युग ऊतमो जुगा माघे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए। हार जियो सोई करे

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने हे परग

मो कुटुंब दिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास माने मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवां ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन भागन हुक्म न साधन किश किश न चाही

आओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत ने बागे ठाकुर आयो आगे हरहाओ ना पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे ये मुक्ता ये जूता रख हो संत संगाहे नाम त्यावो सह समावो नानक हर गुण गावे आसा मोहल्ला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे हरहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आये सर्व फल पाईए सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख विधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे औ कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर पेटिया सो जन ने चलतीया आसा महला पंजवा कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम मिल तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहुकर्म कमाए पर तुमरे दस बेन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण प्रभ संग वस आसा महला पंजवा तार पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नागी डोरा निपतबाजी हार मुका पछतायो मन फोरा ठान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए कामना करया ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवा बापार गोविंद नाए साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन धान पाए सब तजी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवा।

हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा मोहल्ला पंजवां हर क सोग बैराग आनंदी खेलरी दिखायो रहाओ खिनहू पै निरपय खिनहू खिनहू उड़तायो खिनहू रस भोगन खिनहू खिनहू तजायो खिनहू जो ताब पूजा खिनहू परमायो खिनहू कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो राग आसा महला पंजवां तार सतारवां आसावरी एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गोविंद कर हां हर घर मन प्यार हां गुर कया सो चित तर हां हंस्यो तोर फेर हां ऐसे लालन पायो री सखी हरहाओ पंकज मो सर हां पगनी चले हर हां गैड्यो मूड़ नर हां आनन उपाव कर हां तो निकसे सरन पै री सखी थिर थिर चित थिर हां पान ग्रहो समसर हां अंतर एक पेर हां बार अनेक तर हां राजन योग कर हां कहो नानक लोक अलोगी री सखी आसावरी महला पंजवा मनसा एक मान हां गुरस्यो नेत ध्यान हां गिरड़ संत मंत ज्ञान हां सेवा गुर चिरान हां तो मिलिए गुर कृपान मेरे मना रहाओ टूटे अन प्राण हां रवयो सर्व थान हां लयो जम पयान हां पायो पेड़ थान हां तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथान हां पय पावक पार प्राण हां निकर तिसे थान हां हार रस रसे मान हां लाती तिस पूखान हां नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवां हर हर हर गुणी गां जपिए सहज तुनी गां साधु रसन पनी गां छूटन बिद सुनी गां

बिन नावे मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गात गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अनदिन बाणी नामे राता मेरा प्रवलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दु काटे घर नाम प्रगास कर विचार आचार पराता सदगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना एक तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुगध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मेले काल कंटक मारे सज पेल यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सो जी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख तीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दार कर मैलनी हर पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरप गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस कीए होमे ग्रास इकद थाए कीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनघ सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिर से तनका को कही है बिन गुर राम नाम कत लई है राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिला मनहारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरदाता राम गोपाला क्यों पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रखाया आवर न औखद तंत न मंता हर घर सिमरन किल विखंता तू आप भुलावे नाम सार तू आपे रखे कृपा तार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर सब दे जन्म के लेखे देख अचरज रहे विस्माद कट कट सुर नर सह समाध परपुर तार रहे मन माघी तुम संसर अबर को नाही जा की भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज त्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जमदूत दूत से लागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वचल भगता हर संग नानक मुगत पय हर रंग।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਤੁਕੀ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੇ ਦੁਖ ਮਿੱਟੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਆਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈ ਨੀ ਤਦ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਣੈ ਨੀ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਸੁਧ

नीत नीत कर बंधिए दे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो, जिसते सुत्ता नानका जागा ए सोई, जे कर बूझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा ले चलिया केश संपे नाले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे, वंज करो मसूद लहो

तणि साचा मुख नाम रघाओ सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे हृद सिद्ध मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध जोगी पोगी कापड़ी।

एक गर्व बन जाइए। मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए। साहिब हृदय वसाए न पछोताव ही, गुण गा बख्सनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जय देखा तै सोए अवर न जानिए। गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए, रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई। चले सदार जाए अंक समावई, सच्चा साहिब मन वसे वसिया मन सोई। आपे दे वडियाइया दे तोट न होई,

आस तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे पराणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुक्म ना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना है दे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोई न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान कर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उरतारे साची शोभा साग दुआरे सेवड़ भागी जे गुरसेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

सच्चे रते से निर्मल सदा सच्ची सोए, ऐसे कर कर जाप दे आगे जुग जुग प्रकट होए। ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना यो रंग ले ना जाए। अरहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए। निर्मल जोते पार बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ। गुर के पाए पाए जो रते सिवती सच सुमाओ, पाए बिन लाग न लग गई ना मन निर्मल होए। बिन पे कर्म कमावने झूठे ठाओ न कोए, जिसनु आपे रंगे सो रबसी सत्संगत मेलाए। पूरे गुरते सत्संगत उपजे है जे सच सुपाए, बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पलटोर। जिन की तेत से ना जाननी विन नावे सब चोर, एक गुण विहाचे अवगुण विकणे गुर।

जे सच्ची बूझ बुझाए ए मन मेरे बावले हर अस चख साध पाए अस लागा तू फिर बिरथा जन्म गवाए हरहाओ ए जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रह लिवलाए बिन कर्मा किछ पाइगे नहीं क्या कर कहे आ जाए आप शाने शब्द मरे मनो तज विकार गुर सरनाई पज पे बक्से बक्सन हार बिन नावे सुख ना पाइगे ना दुख विचों जाए इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे परम फुलाए दुहागनी पिर की सार ना जानी क्या कर करे सीगार अंदर सदा जल्दियां फिरे सीधे रवे ना पतार सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर सबदी सीगारिया अपने सह लिया मिलाए मरना मनो वसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जमे पी मर जमदर होए खुवार आ मिलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजले तिल सच्चे दरबार आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गवाए इन बिद नगर उठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई हरहाओ।

आत सहित सुख के सब हाट, सा व्यापारी एक थाट, जे जिया डन को लय न जगात, सगुर कर दीनी तुरकी शाप, वखर नाम लड़खेब चलावो, लै लहा गुरम कर आव, सदगुर साहो सिख बन जारे, पूंजी नाम लेखा साज सुमारे, सो वस्ते इत कर

आए अंचल गया साधका नानक है सागर पार पर आए जन्म मरण दुख कटिए प्यारे या पेटे हर राए सुंदर सुगर सुजान प्रा मेरा जीवन दर्द दिखाए जो जी तोते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए जो सुख दर्शन

प्यारे दूजी नाही जाए। जो तू करावे सो करी प्यारे आवर किस करण न जाए। दिन रैन सब सुहावने प्यारे जे चपिए घर नाओ। साई कार कमावनी प्यारे पुर मस्तक लेख लिखाए। एको आप वर्तदा प्यारे घड़ घड़ रहा समाए। संसार कूब ते उधर ले प्यारे नानक हर शरणाए। राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद ससे सोए सिट जिन साजी सबना साहेब एक पया। सेव तरे चित जिनका लागा आया तिनका सबल पया। मन काहे पूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तौ पड़िया। रहाओ ईवड़ी आद पुरख ए दाता आपे सच्चा सोई। इना अखरा में जो गुरमुख बूझे तेस सिर लेख न होई। ऊड़े उमा ताकी कीजे जाका अंत न पाया। सेवा करे सही फल पावे जिन्नी सच कमाया। गंगे ज्ञान बूझे जे कोई

आए माया के संगल बंद लया खखे खुंद कार सा आलम कार खरीद जिन खर्च दिया बंधन जाके सब जग बंदया अवरी का नहीं हुकुम पया गगे गोए गाय जन छोड़ी गली गोविंद गर्व पया ताड़ पांडे जन आवी साजी चाड़ नवागे तई किया कगे काल सेक जे ताले शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे सम कर जाने इन बिद साहेब रमत रहे चचे चार विद जिन साजे चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी पोगी पढ़िया पंडित आप थिया।

तन तेरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे सेजा सुहावी संग तिरक सात सर अमृत परे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाह मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम मैं मंतन घर पावे प्रसंग मराती राम ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे तो गुण पिछाने ता प्रभ जाने गुणे वस अवगुण नसे तुझ बाज एक तेल रह ना सक कहन सुन ना तीजे नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम हर नामो वणजड़या रस मूल अपारा राम मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली कारण कारण समरसरी तार आप कार्य सारे नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार हम कर साचा सोयलड़ा

तन मन पेरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए बहुत चतराईए पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोकाने।

जरा न मरना, नरक न परना, जो हर नाम त्यावे हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लैन से सोह है तिन सुपल होवे, मन सेजन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला, शांत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया, ई वाड़गेरा ताराम, बिखबल मीठा चार दिन, फिर होवे ताता राम, फिर होए ताता खरा माता, ना बिन प्रताप है, ओ जेव सायर दे लहरी, बिजली जिवे चमक, हर बाज राखा कोए नाही, सोए तुझे बिसारिया, सदकहे नानक चेतरे मन, मरे हर ना कालिया, पावरा फूल पहंतिया, दुख अदपारी राम, मैं गुर पूछा अपना, साचा बिचारी राम, विचार सगुर मुझे पूछया, पावल बेली रातो, सूरज चढ़या पिंड पड़या, तेल तामन तातो, जाओ मग बादा खाए चोटा, शब्द बिन बेतालिया, सदकहे नानक चेतरे मन, मरे पवरा कालिया, मेरे जीड़िया परदेसिया, इत पवे जंजा ले राम, साचा साए मन मसे, की फासे जमजा ले राम, मछली विशुन्नी नैन रुन्नी, जाल बद्धक पाया, संसार माया मोह मीठा, अंत परम चुकाया, पगत कार चित लाए हरस्यों, छोड़ मनो अंदेसिया, सदकहे नानक चेतरे मन, जीड़िया परदेसिया, नदियां माव शून्या, मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे, को जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाणे, सदगुरु जन चेतया, बिन नाम हर के परम पूले, पचे मुद अचेतया, हर नाम भगत ना हृदय साचा, से अंत ताही रुन्या, सदकहे नानक शब्द साचे, मेल चिरीम शून्या, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा, शंत कर पहला, हम करे साचा सोहला, साचे शब्द सुहाया राम, तान पिर मेल पया, प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया, सच मन वसाया, कामन सहजे माती, गुर शब्द सी।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सुबाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता तिर मिलिया हदूरे देख तिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाय नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए तिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तबत बुझाई राम शब्द तबत बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंध पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तिर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे।

तेरा गंढ लाग गुरमंग सदा समाले। यों कहे नानक जय मन तू तामदा ते हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले तावत थम्या ने कर बसया आए। नाम हिया जे नाम लय नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया। तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रखाया। ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। यों कहे नानक सतगुर मिले धारत थम्या निकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग माण। मूल पछाणे ता सो जाण है मरण जीवन की सोझी होई। गुर प्रसादी एको जाण है ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जाहे। माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गर्भ लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे। अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। क्यों कहे नानक मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जावे। मन तू मत मान करे ते हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलखो हो। ओ निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। यों कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित में सतगुर मिलिया सो सो चित आया। मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे। जांच पाणा गुण प्रगट होए सतगुर आप सवारे। सेजन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। यों कहे नानक तन सोवेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले तिन सह आप फुलाए। दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। तिन सह आप फुलाए कुमार्ग पाए तिनका किश ना वसाई। तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुक्म तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। क्यों कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुझ परम भुलाए।

हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर घर मन पाया परम सुख पाया हर लहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सखाई प्रण चूका आमन जान जियो।

कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब किसी जानदा, सिर रोग हाथ दीजे, जिना नानक गुरम खिरदा सुध है, हर भगत हर लीजे, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बारों पोल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नाही, हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सो थान पालिया, ले तूर मुख लावा, गुर सिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सदगुर पूजिया,

प्यारे नित आस करे नित जोबन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे नानक हर उरतारे।

दर्शन कौ बलेगारी गुरसो प्रसन्ने मिलना विशुन्ने तन देंदी साच स्नेहा कौ नानक संत अनंत ठाकुर के हरसों की जे नेहा मन ऐसा नेहो करेहो चकवी सूर स्नेहो

रचायो नंग आमन जामणिया। फिर साधु सरणी पड़िगे चरणी अब टूटस मोजो कीती है। ओ नानक शांत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत तब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डेवे। मन ऐसी प्रीत कीजे जैसी तरण पतार उर्जी तेरे सिवे। इहो मन लाल दीजे।

मय प्रभ करमय सुमरत अगत अपार निर्मल। सुनो स्वामी बिनु एहो पर जोड़ नानक दान मांग जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मत हीन निर्गुण अनाथ नीच सर कठोर कुलहीन व्याप्त मोहकीच मल परम कर्म अंग ममता मरण चीत ना आवे। बनता विनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे किसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी सरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लगत रहो ते संग मीठे भोग सोना परमत पार अगन ते आयो बो परदेसे तायो। आपोड तारी प्रमुरारी सर्व सुख हरनायो रखन हारे प्रप्यारे मुझ ते कछु न होआ होना। सुख सहज आनंद नानक किरपा तेरी तरे पौन नाम तारीख उधारे भगते संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर जस नु श्रवन सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधान ना पावगे। हर रंग रते प्रभिधाते राम के गुण गावगे बजद कागज बनराज कलमा लिखन को जे होए पवन। बेअंत अंत ना जाए पाया गई नानक चरण सरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी सरण गही। निरपो पए प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंध पजाणिया। गए कंठ लाया गुर मिलाया जस बेमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही। प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए। राम नाम और हार बेके दिवस गए गत परम मोह विकार बिनसे जोन आमन सब रहे। अग्न सागर पए शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय। नानक नाम त्याए पूर्ण साध संग पाई परम गते जय देखो ते संग एको रब रहे। घड़कड़ वासी आप विरले किने लया जलतल मैयल पूर पूरन कीड़खत सुमानिया। आद अंते मसोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण जन कहया। सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नान कराव रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे। चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप टरे दुख पुग दर दर नाठ प्रगट मग दिखाया। मिल सा संगे नाम रंगे मन लोहड़ी द पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल समूह सब तरे। दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शांत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग। नानक नाम ना विसरो एक घड़ी

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक।

ताप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाईले प्राण सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुभागे। मिलनहा सेज सुहंतिया प्रभ दृष्ट धारी, मिले मुरारी सगल करमल पए खान। बिनवंत नानक मेरी आस पूर्ण, मिले श्री तार गुण निधान। एक ओ अंकार सत नाम।

खेते अंदर छुटिया को नानक सो नाहा, फलगे फुलगे बपड़े पीतन विच स्वाहा, पौड़ी आपी ने आप

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सालाहा विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालि आकाशी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कुतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्ब प्यार कुदरत जाति जैसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार योगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय।

पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विते आप रखियोन कर प्रगटे आख सुनाया। सतगुर मिले है सदा मुक्त है जिन विचों हो चुकाया। उत्तम यो विचार है जिन सच्चे स्यो चितलाया। जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला हौ मिच आया हौ मिच गया। हौ मिच जमया हौ मिच मोआ। हौ मिच दिता हौ मिच लया। हौ मिच खटिया हौ मिच गया। हौ मिच सचियार कूड़ियार। हौ मिच पाप पुन विचार। हौ मिच नरक सुरग अवतार। हौ मिच हसै हौ मिच रोवे। हौ मिच परिये हौ मिच तोवे। हौ मिच जाति जिनसी खोवे। हौ मिच मूर्ख हौ मिच सियाणा। मोह मुक्त की सार न जाना। हौ मिच माया हौ मिच छाया। हौ में कर कर जनते उपाया। हौ में बूझे तांदर सूझे। ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखे तेहा वेख। महला दूजा हौ में एहा जात है हौ में कर्म कमाहे। हौ में एही बंदना फिर जो नी पाहे। हौ में कित्थों उपजे इत संजम ए जाए। हौ में एहो हुक्म है पये किरत फिराहे। हौ में दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कुमाहे। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच तिहाया। ओ नी मंदे पैर ना रखियो कर सुकृत तर्म कमाया। ओ नी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया। तू बगसी सी अगला निध देवे चढ़े सुवाया। वड्याई वड्डा पाया। श्लोक महला पहला।

लग तब उपर तीर्थ सहज जोग बेबाण, लग सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लह सुरती लह ज्ञान ध्यान पढ़ गए पाठ पुराण, जिन करते करना की लिखिया आवन जान, नानक मती मिथिया कर्म सच्चा नीसान, पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू देत मिले सच ता तिनी सच कमाया, सदगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया, श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास, नानक लेख एक गल होर हो में चखना चाख, महला पहला लिख लिख पढ़िया ते

जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी, पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधना मारिए, जेहा काले कालना ते वेहो ना उपचारिए।

रसवा हो, कलयुग रास अगन का कूड़ अगे रसवा हो। महला पहला साम कैसे तंबर स्वामी, सच में आचे साच रहे सब को सच समावे। रेग कहे रहया पर पूर, राम नाम देवा मैं सूर। नाए लय प्राशित जाहे, नानक तो मोख अंतर पाहे। जुज में जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया। पार जाद गोपी ले आया, बिंद्रा बन में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ।

उत्ती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं साभोट निश्चौ कर्मं कौ नानक नेचो त्यावे वेण सदगुरवाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना होम किए मन पाम दे राहे तीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना सलोक महला पहला दया कपा संतोग सूत जद गंडी सतवट यो जिनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना यो तुटे ना मल लगे ना यो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तग्गा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहे नामियां रात दिन सजी नाल तग कपाह हो कती है बामन वट्टे आए ओए बकरा रिन खाया सब को आखे पाए ओए पुराना सुटिए ती फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मने पद उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना तूड़ सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा या पेवत वड़ तागे अवरा कत ले पाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तय जप माली

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, क्योंकि ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड मेदनी

गोर चरण लाघम बिनवता पूछत कहे जियो पाया, कामन काज जब उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया। देव करो दया मोहे मार्ग लाभो, जित

ज्योतक जान बहुभव्य करना तंत मंत्र सब औखद जान अंत तऊ मरना राज भोग अरशद्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर यो राम में जंपो मेट जन्म मरना आसा फील रबाबी बलद पखावज कौआ ताल बजावे।

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोए तुर्क करेगा, अपन ही कट जाई।

हंस अकेला जाई। कहेत कबीर सुनो रे संत, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन सुध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेरी सब लीना, श्रवण विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपुन डसियले गुर प्रसाद दीठी रहाओ। सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछान्या।

आए। राम राम राम रमे रम रही है, साग स्यो पूल नहीं कही है रघाओ। कौआ कांक पूर चिराए, कह बिशियर को दूध पियाए। सत संगत मिल बबेक बुध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत स्वान

चर भय सचिरा मन जाई बार बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बुझे राम रमत तिस सबके सूझे बाईस चौपदे।

असबड़ पाग हमारा तुर नर मुन जन कौतक आए कोड़ ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की।

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो नहा प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

कियो सिंगार मिलन कह ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पेर हर की भौरिया, हरा बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ, तन पे

गुप्ता हीरा प्रगट पयो, जब गुर गमदिया दिखाई, आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी, सौरे पेई है बुरी, आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी

आई, बड़ी का सुहाग टरयो, लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरयो, आशा मेरी बौरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ, एन मुडियन मेरा कर तुंदरावा, बिटवे राम रमो।

सूते सूत मिला एक कोरी, आसा अंतर मायल जे तीर्थ ना वे, तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीने कशु न होवे, नाही राम एयाना, पूजो राम एक ही देवा, साचा नामन गुर की सेवा, रहाओ, जल के मज्जन जेगत होवे,

संत की संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजे, दीजे देवा देव रखाओ, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च

अंतर नाही आसा, तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बसा। नीच रूख ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा, माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे।

पयो जो तन पयो शिन शिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जान, तुझे चरण अर बिंद पवन मान, पान करत पायो पायो रामैया तान, अरहाओ संपत बिपत पडल माया तान। ता

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा सेज फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्या जिन मन होर मुख होर ते कंडे कच्या।

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी, गुरप्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो हरहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई, हर बिन होर रास कूड़।

कर गर्दब पवे गर्भ जोनी दईये मारे महा त्यारे दीन दयाल हो जानी ऊपर कर कृपा लियो उबारे नानक जन हर की सरनाई हर पावे हर निस्तारे गुजरी महला चौथा हो दयाल मेरा मन लाभो और अनदिन राम नाम नित त्याई सब सुख सब गुण सब निदान हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई गुरमत राम नाम जस गावा अंत बेली दरगे ले छाई रहाओ तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी कर कृपा लोच मेरे मन लाई मैं मन तन लोच लगी हर सेती प्रलोच पूरी सदगुर सरनाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई ना बिना रस कर दुख पावे मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर हर सरना तिन दरगे हर हर दे वडे आई तन तन सावास।

माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कौसन बंद हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस गए शरीर। रहाओ भक्त जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे गृहस्थ उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर सो बन आई, तब जो कुछ करे सो मेरे घर प्रा

साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो मुक्त पयो चम्यारो गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारो जाने कमन पता शिव बरंज अर सगल मोन जान गहे ना सकाहे गता प्रभ की आगम

अवर सियानप जन कौ कछु न आयो। जय जय अवसर आए बन्यो है तहां तहां हर त्यायो। प्रभ को भगत वछल बिरदा।

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल हरहाओ मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवां आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ तर्क करत अनक बो पाती।

नीचे जोत तरी त्याइए अपनो सदा हरी। सोच अंदेसा तां का कहां करिए, जा मैं एक करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सदगुर, मन शरण तुम्हारे परी। अचेत याने बारक नानक, हम तुम राखो तार करी। गुजरी महला।

कार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लेव लागी। कबल प्रकाश पए सासंगे दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण पर्यो नांग प्रा तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला तार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर न दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझगी स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किछ रहे न दिसै

सिद्ध साधक लिवलागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी, खंड ब्रह्मांड त्रैगुण नाचे, जिन लागी हर लेव तुम्हारी, जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी, जो तुद पावे से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिवलाए, से भगत से तत ज्ञानी, जिन कहु को मनाए, एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागे, बिन सेवा भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचारे, ता सज पावे कोई, माया के अर्थ बहुत लोक नाचे।

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रत्या

पौड़ी ए मना अत लोभी नित लोभे राता माया मनसा मोहनी दहत फिराता अगे नाओ जात ना जाए सी मनमुख दुख खाता रसना हरसना चखे फीका बोलाता जिन्ना गुरमुख अमृत चाखे।

मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन भरमगढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हर स्यों जोड़िया। नाम निदान अखुट गुरदे दारुओ, महारोग बिकराल तिने बिदारुओ। पाया नाम निधान बहुत खजानिया, जिता जन्म अपार आप पछानिया। महिमा कई न जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख्य पेव। सलोक महला पंजवां, उदम करेंदिया जियो तू, कमावदिया सुख पुंच। ध्याय दिया तू प्रभु मेल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवां, शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग। नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाव तेजियो अर्पिए। आए चित निहाल साहिब बेसुमार, तिसनु पोहे कवण जिस वल निरंकार। साब किश्त के वस न कोई बहारा, सो भगता मन उठ सच समहारा। तेरे दा ध्यान तो तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। सलोक महला पंजवां, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बस ना निवार। राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवां, खांदिया खांदिया मोह कठा पए नंदिया सब अंग। नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी।

सारो दिन डोलत बन मैया, अजो ना पेट अगई है, जन भगतन को कहो न मानो कियो अपनो पई है, दो सुख करत महाप्रभुडो अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभिसरयो यो अवसर कद पई है, प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों गात बेन।

बारक कैसे जीवे रग राई, तन ना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ, जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, ओछी मत मेरी जात जुलाह। हर का नाम लयो मैं लाह, कहत कबीर।

कहे किन बूझिए, फरमैया आकुल री बाई हरहाओ, क्यों आका से पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई, ज्यों जल माजे माचलो मार्ग पेखणो ना जाई, ज्यों आका से कड़ू अलो।

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर किसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटिया अंधेरा दुख नाठा आम्यो हर हस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नव निधे। ग्रेलाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइए। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अन्द

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम वखाणा राम। अमृत बाणी उच्चरा हर जस,

मंगै हर भगत पाइये प्रभते आइये जाए मिल गए हर जना। मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन इहो मना बड़ पुरख पूरन गुण संपूरन प्रम पीत हर हर मिल भगै। बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे

बिनवंत नांग सदा निर्मल सच शब्द रोण चुनकारु सुन वडभागिया हर अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिनी जानी जिस आप कृपा करे अमरथिया फिर ना मुआ कल कलेसा दुख हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये

कोड़ अपराध परे पी तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख ले हो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै।

वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतर ना संग शोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन सा संगम सब मिथया संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे जा।

आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बगसे करे दया, आपे पुल न पुल्ले कभी, सब सच तपावस सच थया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा, हर नाम न सिमरे साध संग, तैतन उड्डे खेहे, जिन कीती तिसे ना जानई, नानक फिट अलूनी दे। महला पंजवा, खड़ बसते चरणार बिंद, रसना जपे गोपाल, नानक सुप्रा

तू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, वे जा आव डुबे तुम कहां तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ए जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग न होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

में मान किया है। तुलदन केहा मेरा मानो चूड़ा पान पलंग स्यो मुंदे सन बागी सन बाहा एते वेश करेंदिगे मुंदे सौ रातो अवराहा नाम नियार ना चूड़िया ना से वंगड़िया जो से कंठन लगिया जल से भाड़िया सब सैया सौ रावण गईया हो दादी कह दर जावा अमाली हो खरी सुचजी तैस एक न पावा माठ गुदाई पटिया परगे मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो विसूर विसूरे मैं रोवंदी सब जग रुन्ना हुरनड़े वनो पंखेरू एक न रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन हो पिरो विशोड़ी

माया मोह गुबार है, गुर बिन ज्ञान न होई। शब्द लगे तिन बुझया तूजे परज बगोई। मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभु रवे ता पावे मोह द्वार। अरहाओ गुणा का निदान एक है, आपे दे ता को पाए। बिन नावे सा विछड़ी गुर के शब्द मिलाए। मेरी मेरी कर दे कट गए, तिना हथ क्यो न आया। सदगुर मिले सच मिले, सच नाम समाया। आस्था मनसा यो शरीर है, अंतर जोत जगाए। नानक मनमुख बंद है, गुरमुख मुक्त कराए। वढ़हंस महला तीजा, सुहागनी सदा मुख उजला। गुर

निर्मल नाम से मन आए पर में भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुवार नानक से बड़ भागी जिन घर नाम के आया गुर प्रसादी मन वसाया वढ़हंस महला तीजा हौ में नावे नार विरोध है दोना वसे एक ठाए हमें जो सेवा ना हो गई कामन बिरथा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ होमे सब शरीर है होमे ओपत होए होमे वड़ा गुबार है होमे विच बुझ न सके कोए होमे विच भगत ना हो वई हुक्म ना बुझिया जाए होमे विच जियो बंद है नाम ना वसे मने आए नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए वढ़हंस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे, मेरा स्वामी

सो हर हर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वड़हंस महल।

सार संघर अमृत पीजै ना जू मरे न कबहू चीजै वड़भागी गुर पूरा पाईऐ गुर कृपा ते प्रभु त्याई ऐ रघाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर प्रा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरणा हार गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंत मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ांस महला पंजवा विसरनाई प्रव दीन दयाला तेरी शरण पूर्ण कृपाला रहाओ जय चित आवे तो थान सुहावा जित वेला विस

काम क्रोध नित संतावे, वाहो वाहो सहजे गुण रवीजे। राम नाम इस युग में दुर्लभ है, गुरमत हरस पीजे रहाओ। शब्द चीन मन निर्मल हो।

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वनावना, जिस नाल संगत कर श्री की।

ब्राह्मणा साभ्यो पाई ने आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे, मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, इस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले, कर्म हुआ तुर कदे, सब उपाय ने आप आपे नदर करे, वढ़ांस महला पहला, करो दया तेरा नाम खाना, सब उपाय गे आप आपे सर्व सुमाना, सर्वे सुमाना आप तू है, उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, एक ना पेख पवाइया, लोभ मोह तुझ किया मीठ, एत परम खुलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम खाना, नाम तेरा है सच्चा सदा, मैं मन पाना, दुख गया सुख आए सुमाना, गावन सुरनार सुगड़ सुजाना, सुरनार सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही, अहला जन्म गवावे,

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप शाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

तीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड़पा गो राम। गुरमती मन निज कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सद बैरागो ताचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उबजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम। गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया सुमाई, वढ़ांस महला तीजा मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो। अपने कर तू सुख वस ओए न सके जम काल जियो, काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए। सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए, दूजे पाए परम विभूति मन मुखमोही जमकाल। कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल, मन मेरे अंतर तेरे निधान है बाहर वस्त ना पाल। जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल, गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई। मनमुख अंदले ज्ञान विगुणे दूजे पाए खुवाई, बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल। नानक अंतर तेरे निदान है तू बार वस्त ना पाल, मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा। सतगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा, अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई। मन माया मोह वे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई, होमे मार सच शब्द समाने सच रते अदकाई। नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई, मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन्म वड़पागी राम। जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम, से जन बैरागी सच लगलागी अपना आप पछाणिया। मत निचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया, एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वड़पागे, वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम। लहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए। लहा भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजी है जा सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा राम, कूड़ बोल बिकामणी बहु वधे विकारा राम। बहु वधे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा। खोटे खरे सा

सदगुर देख सरसे राम, हर नामो हर नाम दृढ़ाय, जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निंद पाई, हम में रोग गया दुख लाता, हर सहज समाद लगाई, हर नाम वडाई सदगुर ते पाई, सुख सदगुर देव मन परसे, हों जीवा सदगुर देख सरसे,

सदगुरु ज्ञान खड़ग हद तीना यम कंकर मार बिदारे हर प्रा कृपा धारी सुखदाते दुख लाते पाव संतापा सुन गुरमुख नाम सा बिनसे होमे पापा जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया आरोगत पए शरीरा अन दिन सहे समाध कर लागी हर जपया गैर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया हर तारो कृपा तर कृपा लियो उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख पंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सदगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम वढांस महला चौथा कोड़िया एक ओंकार सदगुर प्रसाद दे तेजन जी राम पाइया राम तन मानस जन्म पुन पाइया राम मान जन्म वड़ पुनने पाया देसो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया ए देसो बाकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वड़ भागी पाई नाम सकाई जन नानक राम पाइया

मेरे केत मुख तुसा लागी, गुण अवगुण मेरा किशना बिचारिया, बक्सली आखिन माघी, नौंद पाई वजी वधाई।

ना जानई। अज्ञानी अंध अंधार, रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझणहार। मूर्ख आप गणाए दे मर जमे हुए खुवार, नानक रतना सो लहे जिस गुरमुख लगे प्यार। सदा सदा नाम उचरे हर

ब्राह्मणगार यो मनु सदा सुख वस सहजे करे व्यापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करा मनहार नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श त्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस घर नाम सुने मन अंध पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर घर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाउ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया श्लोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए नाम रतन हर प्रगट होआ नानक सहज समाए महला तीजा सबदे साधन आयो नाम न लगो प्यार रसना फिक्का बोलना नित नित हुए खुवार नानक किरद पये कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम को सांते आई तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम हर भगत पाई तन तन हर भगत सदगुरु हमारा जिकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई तन तन हर ज्ञानी सदगुरु हमारा जिन वैरी मित्र हम को साध समध दिखाई तन तन सदगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई श्लोक महला पहला कर ही मुंद वदेश पेर

की खबर ना पाई, अखी मीड़ चलिया अंधेरा, हर दर्द से ना पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ताए अखी वेखा कहना कथन ना जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गुरमन परम ना पागे सच नाम वड़ियाई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंड चौबारा सगल पवन की मूल।

होचे तू गौरा हम हौरे तुझ की मन राते आयनस प्रभाते हर सना जाप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे आयनस नाम रते से सूचे मर जन्मे से काचे अवर ना दिसे किस साला ही किसे स्त्रीक न कोई प्रमत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर नाथ काल न कर्मा जात अजात अजोनी संपो नाथ पाओ न परमा साचे सचियार मिटो कुर्बान नाथ रूप वर्ण नहीं रेखिया साचे शब्द निशान रखाओ नाथ माद पिता सुद बंधव नाथ काम न नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे चूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचाचारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है त्यों सागत मरे प्यास त्यों हर बिन मरिगे रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर मिले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए अड़सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाईए हर पाई गे सदगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटे मनुख नहीं बूझे, कोई न सुने पुकारा। अंधा जगत अंध वरतारा, बाज गुरु गुबारा। ओमे मेरा कर कर विगुते, किहो चले न चल दिया नाल। गुरमुख होवे सो नाम ते आवे, सदा हर नाम समाल। सच्ची बाणी हर गुण गावे, नदरी नदर निहाल। सतगुर ज्ञान सदा कर चानन, अमर सिर बाद सिर।

प्यारे राखो पैज हमारी रखाओ। शब्द सलाई सदा हो जीवा गुरमती पौ भागा, मेरा प्रसाचा अत सवाल्यो गुरसे व्याचित लागा। साचा शब्द सची सज बाणी दो जन अन दिन जागा, महा गंभीर सदा सुखदाता इसका अंत न पाया। पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम चुकाया।

पाई गुरमुख पाए हर थाए रखाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजे पाई मनमुख दूजे पाए। तो कुटे मनमुख कर्म करे पाई पल्ले किशु न पाए। गुर मिले नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवे पाई। गुर कह गेत अपार आया सो प्रवान है पाई जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाईगे पाई गुर सब दी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला ती गुणी त्रिपुण व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटिगे पाई। पूछो ज्ञानियां जाए मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जू तेरे मन वसे पाई सदा हर के गुण गाए रखाओ। नामे ते सब उपजे पाई नाए विसरे मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई हृदय रखिया उरतार। गुर सरणाई उबरे पाई राम नाम लिव लाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए। तोरठ महला तीजा कर पहला सदगुर सुख सागर जग अंतर होर थे सुख नाही। हौम में जगत दुख रोग व्यापिया मर जन्मे रोवे ताही। प्राणी सदगुर सेव सुख पाए।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मगना पाए। नानक सतगुर मिले ता

सब जग मछली हर आपे, आप पुल न पुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तब तापे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हारस तापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तोलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निधान।

प्यारा आपे शब्द समाहा, आपे लिखने आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओमाहा, आन दिन अनद होवे वडभागी, लै गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावल सुंदरा प्यारा, आपे वंश वजाहा।

आद एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन तय को दिशा सुन मीता हो तेरी शरणाई आया प्रा मिलो देव उपदेशा मां न कीजे शरण परिजे करे सो पला मनाईये सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजे क्यों दर्शन हर जियो पाईये पयो अनुग्रह प्रसाद संतन के हर नामा है मीठा जन नानक कहो गुर कृपा थारी साब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोल ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रद पाले निसार समाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराध

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधव पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो काटायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांछित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दू

मन वसिया अविनाशी, ताको बिघन न को लागे। जो सतगुर अपने राखे, चरण कमल बसे अंतर अमृत हरस जाखे। हर सेवा सेव प्रव्यापने, जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दाता के बलिहारे, जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पंजवां, माया मोह मगन अंधियार है।

गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग प्राप्त, तिन पेट दुर्मद खोई।

पंजवां पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रहिया उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुम्हारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वैसे वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पंजवां गुरपूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा पा मिले हर गुण गावो सदा सुखाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवै पुरख विधाता हर हस्ते नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवां गुरपूरे कीती पूरी रव रव रया पार पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे विघन ना लागे तिलका कोई कार्ज सगल सवारे हरहाओ मिल साधु दुरमत खोए पादत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद नित गाईये सा संग मिल त्याईये मन बांछित फल पाए गुर पूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवां दैद सदन मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैने तिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रोम आयो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चरके पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो।

लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सरपस दीने आपे आप मिलाया कहो नानक।

की ओटा जो सिमरत हकीकत होवे उधरे सगले कोटा रगाओ। संत संग जस गाया इव पूर्ण गर्तन पाया को नानक आ मिटाया।

करन कराम नगर अंतर जामी जने पने की रखे, जय जयकार हो जल पीतर शब्द गुरु रचाख। प्रभु जी तेरी ओट गुसाई तू समर्थ शरण का दाता, आठ पैर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्र तेरा इसे अंदेसा नाही, सतगुर चरण लगे पो मिटिया हर गुण गाए मन माही। दुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा, जिन कर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी पूर्ण प्रभु के कामा, गुर चरणी लाग तरयो पौ सागर जप नानक हर हर नामा। सोरठ महला पंजवा हयो किरपाल दीन दुख पंजन आपे साध जथाटी, फिन मैं राख लियो जन अपना गुर पूरे बेड़ी काटी। मेरे मन गुर गोविंद सद त्याई है, सगल कलेस मिटे स्थान ते मन चिंदिया फल पाई है रहाओ। जी जंत जाके सब कीने प्रभु ऊंचा अगम पारा, सा संग नानक नाम ते आया वो उजल पै दरबारा। सोरठ महला पंजवा सिमरो अपना साई दिन सरैन सत्याई, हा दे जिन राखे हर नाम महाराज चाखे अपने गुरु।

कैसी कर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमरे हर सागर को तरई। कल में एक नाम कृपा निध, जाहे जपे गद पावे और तर्मता के सवनाहन। हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी, या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर। नानक दर्पण न्याय सोरठ महल्ला नाम, माई मैं केवद लखो गुसाई। महामो अज्ञान तिमर, मो मन रहो उरझाई रहाओ। सागल जन्म परम ही परम खोयो, न अस्थिर मद पाई। विख्या सकत रहो निस्बासर, न छूटी अदमाई। सा संकब हु नहीं कीना, न कीर्त प्रगाई। जन नानक मैं नाय को गुण, अराख लिहो सरनाई। सोरठ महल्ला नाम, माई मन मेरू बस नागे। निस्बासर विखेन को तावत

सहज पियाई। दुबदा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई। सब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाई। मानमुख जंत तुकसदा निवासी, गुरमुख दे वडियाई। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीव न पाई। तुन समात महापरमार्थ, तीन पवन पत नामंग। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामंग। कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगदरड़ामंग। मान मुख जूठ लय पैमानंग, आपे ज्ञान आगामंग। जिन चाख्या सेई साध जानन, ज्यो गूंगे मिठे आई। अकथे का क्या कथिये पाई, चलो सुधार जाई। गुरदाता मेले तामत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यो चलाए त्यो चल पाई, होर क्या को करे चतराई। एक परम भुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेगा फल पाया, सुगम चला मनहारा। सेवा करी जे कशोवे अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर मिले है कृपा कीनी, अमृत नाम आधारा। गगन अंतर वास्या गुण।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याह हो खनली तोती उजली ना होवई जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे उल्टी होवे मत बदला हो नानक मैल ना लगई ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली।

अब बेगल कह न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हिरदे रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी। कहे कबीर रंग राता, मिलियो जग जीवन दाता। जाके

मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया हर पेटत आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिले हो सोई। हर का

ते तोरे तो अपन बेडी आवे हो ऐसो बेडी बर न सको सब अंतर सब ठाई हो गूंगे महा अमृत रस चाखे पूछे कैन न जाई हो बेडी के गुण सुन री बाई।

अणमड़िया मंदल बाजे में सामन कन हर गाजे बादल बिन बरखा होई जाओ तत विचारे कोई मोको मिलो राम स्नेही जे मिले देश सुदेही रखाओ मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया ये पाओ गया परम पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन ना मैं तत पछानिया राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं ओदध जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रमेयस जैसा मानेंगे होए न तैसा रहाओ नरपद एक सिंहासन सोया सुपने पया पिखारी अशतराज विशरत दुख पाया सो गल पई हमारी राज पुयांग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया आनक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भुगवे सोई कहे रविदास हाथ पहने रह सहजे हुए सुहोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने शूटन को जतन करो हम शूटे तुम आराधे माधवे जान हो जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी रहाओ मीन पकड़ फांक्यो अर काट्यो रांध कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीनो तऊ न बिसरो पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कहे रविदास भगत एक बाडी आप हे कासो कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही दुलाभ जन्म पुन फल।

पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, आराम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा, चमरटा गांठ न जनई।

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोगश पाईए पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चित न किया कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए, पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हम मर रही है। तना श्री मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तप हे आओ जीड़ा बिल लाए, फिर जसवारे साचा सोए तिस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए रखाओ। वखर नाम देखन कोई जाए ना को चाखे ना को खाए, लोग बतीने ना पत होए ता पत रहे आराखे जा सोए। जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए। हुण उठ चलना मोत के ताल क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल, जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए हर सो चित लागे तिरकाल ना खाए रहाओ। सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास, गुर की ऐसी वड्याई पुत्र कलत्र विचे गद पाई। ऐसी सेख सेवा करे जिसका जीव तुझ आगे तरे, साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगह पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे

आवे वेख नानक जेब च रुपा होय खरा खरा आखे सब कोए रहाओ कादी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नहावे जिया खाए जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाणे गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवित मरे तो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान सबंसोई दिल धोवे मुसलमान सोई मल खोवे पढ़िया बूझे सो प्रवान जिस सिर दर्ग है का निशान तनासरी महला पहला कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सदका टब थारत जग प्रष्ट होए डूबता इब जग कल मैं राम नाम सार अखी ता मीट है नाग पकड़े ठगन को संसार रखाओ आन से ती नाग पकड़े सूझते तिन लो मगर पाशे कश न सूझे यो पद्म अलो खत्रिया ता धर्म छोड़िया मलेश पाख्या गही सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही कष्ट साज साज पुराण शुद्ध करे वेद अभ्यास दिन नाम हर के मुक्त नाही कहे नानक दास धनासरी महला पहला आरती एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ सहसता बनायन नान नयन है तो कहो सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद दिमल नार एक पद गंध देन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मैं जोत।